अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे ईरान सां ॻाल्हियुनि में अॻभराई थी आहे। इसराइली वज़ीर आज़म खे ईरान ते हमिलो करण खां रोकियो हो। ॿिन टिन ॾींहनि में को मनसूबो साम्हूं अची सघे थो। लॻे थो ईरान मुआदे ते सहियूं करण में दिलचस्पी रखे थो। मुआदो थियण ताईं अबन हुर्मज़ जी नाकाबंदी पूरी कुवत सां जारी रहंदी। ॻाल्हियुनि जी कामयाबीअ बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ी सां घटिजी वेंदियूं।

ईरान ऐं इसराइल जे विच में ते हमला रोकण जो ऐलान ईरान ऐं इसराइल जे फ़ौज हमला रोकण जी तस्दीक करे छॾी। पाज़रान इनकलाब चयो आहे त भारत ते हमलनि जो भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। इसराइल उहिदेदार मूजिब सदर ट्रंप जी दरख़्वास्त ईरान ते हमला रोकिया आहिनि। लबनान में हिज़बुल्लाह सदर ट्रंप ॿिन्ही मुल्कनि खां हमला रोकण जे मुताबिक़ वेझो आहियूं, मुआहिदे खे ख़राब न कयो।

एनर्जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी चेयरपर्सन किरोत लाइन मरीज इजलास सक्कर हैदराबाद मोटरवे कम शुरू न थे मेंबर जो सख्त एजाज सक्कर हैदराबाद मोटरवे वो मनसूबो कौमी इकतदी काउंसिल इजलास में वजी आजम आड़ो रखने की हिदायत कमेटी मेंबर जाम सैफुल्ला धारे जो सैफुल्ला अबड़ो बिन एतजाज कर सिंध से रोड के मामले से ज्यादती थी रही है बिन वजी आजमन की अफ्तताह बावजूद सक्कर हैदराबाद मोटरवे रिथा थे कम शुरू ना थो मार्च में कम शुरू करण जो वायदो किया पर टे महीना गुजरी वन कम शुरू ना किया मामलो वजीर आजम आड़ो रखो वाले

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252578 6।
5: जी हाँ, 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार? क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर।

0: माथली और माथली की आवाज GFM 90.4
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
2: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
2: जी हाँ बुड़ी 331 5 7 86
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

वफाकी बजट की तारीख तब्दील, बजट 10 जून बदरा 12 जून से पेश थियण जो इम्कान। नाणे वारी वजारत हतमी तारीख जो ऐलान अज कंदी। ज़रियन मूजिब वफाकी बजट 10 जून से पेश न करण जो फैसलो वजीर आजम ए सदर विच में मुलाकात दौरान कयो वियो। वफाकी बजट पेश करण की नई तारीख जो ऐलान नाणे वारी वजारत अज कंदी। सूबन पारा 1700 अरब रूपया वफाक के फराहम करण बाबत फैसलो कमेटियो कंदियूं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास पाण 10 जून से थन्दो। इजलास में तरक्याती बजट की मंजूरी डी वेंदी।

ईरान ऐं इसराइल जे विच में ते हमला रोकण जो ऐलान ईरान ऐं इसराइल जे फ़ौज हमला रोकण जी तस्दीक करे छॾी। पाज़रान इनकलाब चयो आहे त बेरुत लबनान में हिज़बुल्ला ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रहंदियूं। अमरीकी सदर ट्रंप ॿिन्ही मुल्कनि खां हमला रोकण जो मुतालबो कंदे चयो त ईरान सां मुआदे जे वेझो आहियूं, मुआदे खे ख़राब न कयो वञे।

समूरियूं धुरियूं साहब जो मुज़ारो कनि हतमी मक़सदु हासिल करण जे वेझो आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो त विच ओभर में तशदुद में वाद अमन वारे मक़सद में देर जो कारण थी सघे थो। तकरार जे हल लाइ भाइरनि ऐं भाइवारनि सां ॻाल्हियूं हतमी मरेले में आहिनि। छाकाणि खां चिकटाण खां पासो कयो वञे। आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े रावला कोट में गुज़िरियल ॾींहुं पुलिस अहलकारनि ते पाबंदी मिलियल तंज़ीम जे तशदुद ऐं शहीद अहलकारनि जी बि हरमती करण वारी वीडियो साम्हूं अची वई। पाबंदी मिलियल तंज़ीम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे माण्हुनि पुलिस ऐं कानून लाॻू इदारनि ते सिधियूं गोलियूं हलायूं। वीडियो में पुरतशदुद हमले ऐं शहीद पुलिस अहलकार जी लाश जी बेहुरमती थींदे ॾिसजी सघिजे थी। शर्मनाक अमल सां पाबंदी मिलियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे दहशतगर्द चेहरो ज़ाहिर थियो। भारतीय इंस्पॉर्ट खारजी टीपी पाबंदी मिलियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जे हक़ में पधाई बि जारी कई। सेनेट जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी चेयरपर्सन किरोतलाइन मरीज ज़रत हेठि इजलास। सकर हैदराबाद मोटरवे ते कम शुरू न थियण ते मेंबर जो सख़्त एतिराज़। सकर हैदराबाद मोटरवे वारो मनसूबो क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में वज़ीर आज़म वारो रखण जी हिदायत। कमेटी मेंबर्स जाम सैफुल्ला धारे जो ऐं सैफुल्ला अबड़ो ऐं ॿिनि एतिराज़ करे चयो त सिंध सां रोड जे मामले ते ज़्यादती थी रही आहे। ॿिनि वज़ीर आज़मनि जी अफ़्तताह बावजूद सकर हैदराबाद मोटरवे रिथा ते कम शुरू न आहे थियो। मार्च में कम शुरू करण जो वाइदो कयो वियो पर टे महीना गुज़री विया आहिनि, कम शुरू न आहे कयो वियो। मामिलो वज़ीर आज़म वारो रखियो वञे।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

उसको कहेंगे मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और चौबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरी परस्तारों या गड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने

लोग करेंगे तो कॉल कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा पूरे पूरे एक बजे तक। और हम प्ले करने जा रहे हैं एक और सॉन्ग, और इस सॉन्ग के साथ हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: आई हाँ गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: जाती है।
1: मेरा साथ देकर काश है, आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं। सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पर। कॉमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज जिसके ऊपर आप आ सकते हैं, GGFM88 की पेज के ऊपर, ठीक है, GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कॉमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। कॉमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी, और इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03000113488 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आप लोग मुझे कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद मुझे एक अच्छा सा गाना सुना सकते हैं, ठीक है। सर लगा गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट होने वाला है जिसका नाम है ओके फर्स्ट कॉलर ऑफ द सेगमेंट। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
2: आशिक हुसैन कौन बात करता हूँ।
1: आशिक हुसैन भाई कैसे, ठीक ठाक?
2: अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाओ कैसे, ठीक ठाक है?
1: जी तबीयत ठीक ठाक है। और मुझे बताइएगा के प्रोग्राम सुन रहे हैं?
2: बहुत अच्छा चलता है आपकी आवाज़, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है, जिंदगी गुजार।
1: चले जबरदस्त। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि ये गाना सुनाएंगे?
2: हाँ जरूर सुनाएंगे, निकट मास की आवाज़।
1: ओके सुनाए प्लीज।
2: शर सजेनी ईंदी आहियां कुरप करवा काबो मटका ते मोरो सखर।
1: ओके ये वाला हम गाना आपको सुनाते हैं, और मुझे बताएं और कुछ कहेंगे?
2: हाँ जरूर कुछ ये कहना चाहूँगा था, जिसमें सारे लोग सुनते होता है, पानी का लीम का इस्तेमाल करो, अभी गर्मी जितनी चलती है ना, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, और बच्चों का भी ख्याल करो, आपका भी ख्याल करो।
1: ओके जी थैंक यू।

0: ओके जी, साथ साथ हम भाई का गाना प्ले करेंगे और गाने के साथ साथ कॉल्स ले लेंगे बहुत सारी. नेक्स्ट कॉलर ऑन द कॉल. हेलो.
1: हेलो अकराम जी. मैम
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ.
0: सागर भाई कैसे? ठीक ठाक.
1: ठीक ठाक मैम.
0: कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप हमें?
1: गजल सुनाऊंगा मैम आज.
0: सुना. ओके.
1: दुनिया किसी के प्यार में कनक से कम नहीं, एक देर है जो तेरे से कम नहीं. दुनिया किसी के प्यार में
0: ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें सागर भाई अपना. ओके जी, अल्लाह हाफिज. ये गाना सुनेंगे हम, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे.

0: लगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट. सो हेलो
1: हेलो
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: वालेकुम अस्सलाम, वसीम बात कर रहा हूँ.
0: वसीम
1: जी,
0: वसीम कहाँ से?
1: रोड़ी से.
0: रोड़ी से वसीम पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी हाँ, पहली बात कर रहा
0: हूँ. ओके, मुझे बताएं प्रोग्राम सुनते हैं?
1: हाँ जी सुनता हूँ.
0: कौन सा प्रोग्राम है ये? जी
1: जंक्शन.
0: वो शाम को चलता है?
1: जिंदगी गुजार है.
0: हाँ ये जिंदगी गुजार है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो के उठे आप?
1: जी
0: सो के उठे, इसलिए याद नहीं दे रहा?
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं.
0: अच्छा ऐसी बात नहीं है, चलो फिर जैसी भी बात है मुझे एक अच्छा सा गाना सुना दें प्लीज.
1: हाँ जी मैं सुनाता हूँ. तेरा यार वो मिला, तेरे मुना दा दीवाना, तेरा यार वो मिला, तेरा दिली.
0: किसका गाना है ये? हेलो हेलो वसीम. ओके जी, इन्होंने बताया नहीं. सो खैर कोई बात नहीं, 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुझे.

0: ओके जी, ये तो म्यूजिक निकला, मैं समझी गाना है, लेकिन नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम बाजी।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: अनुवाकल काली जंगल पे बढ़े हैं बाजी।
0: ओके जी, तो मुझे बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: बिल्कुल बाजी, बड़े शौक का काम होता है।
0: ओके, फिर गाना सुना दे।
1: गानों बाजी सुना जाते तो वो बताएंगे सही।
0: हाँ जी, प्ले होगा आपका गाना।
1: समझ रहे हो गानों बुदायो? हाँ तो फिर समझ रहे हो गानों बुदायो सामने।
0: ओके, कौन सा गाना? कोई भी सुना दूँ? कोई भी गाना सुना दूँ?
1: हाँ, गानों समझ रहे हो, कुछ तो बुदायो।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज। 03000113488। गाने की तरफ मूव करते हैं जी, और साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय नबील शौकत, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

ओके जी, आज का टंग ट्विस्टर जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड टंग ट्विस्टर इज साजिद ने सात सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई। साजिद ने सात सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई, ये कहना है। और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सो अगला जो हमारा सेगमेंट होगा अगले घंटे में, दैट इज बोलो तो माने, जिसमें एक अदर टंग ट्विस्टर आप लोग कह के दिखा रहे होंगे, बोल के दिखा रहे होंगे। सो उसमें फिर हम टंग ट्विस्टर खेलेंगे और आप कहेंगे टंग ट्विस्टर। सो इसी के साथ

باقي شو اللي يهم. और एक और गाना प्ले करेंगे और इस गाने के साथ जाएंगे हम न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

लबनानी हथियारबंद फौज कमांडर इन चीफ जनरल रोडलिफ हेकल जे जीएचक्यू आमद फील्ड मार्शल सदास मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर मूजिब जीएचक्यू पहुंचण ते लबनानी कमांडर इन चीफ के पाकिस्तानी फौज के दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। मुलाकात दौरान गडियल दिलचस्पी के मामलन इलाकई सिक्योरिटी सूरत हाल ए दिफाई तामन के ख्याल की देवट कई वही। पाकिस्तान ए लबनान के हथियारबंद फौजन के विच में पेशेवरानी लागापा तरबियती तावन वधाइण ते इतफाक कयो वियो। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर लबनान से डिघे अरसे खुशगवार लागापन की अहमियत से जोर डनो ए लबनानी हथियारबंद फौज से दिफाई तावन के वधाइण की पाकिस्तान के अज़म जो वर्जाव किया।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी हवायत ईरान से गालन में अग भराई थी है। इसराइली वजीर आजम के ईरान ते हमलो करण का रोको हो बिन टिन डीन में को मनसूबो सामू अची सके तो लगे तो ईरान मुआहदे से सहयोग करण में दिलचस्पी रखे तो मुआहदो थे ती अपना हुरमत की नाकाबंदी पूरी कुवत से जारी रही गालियन की कामयाबी बाद तेल जो कीमतू तेजी से घटी वेंदू

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर, आप सुन रहे थे
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: Okay, जी, welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. हमारा सेगमेंट जिसका नाम है बोलो माने, बोलो तो माने में एक अलग टंग ट्विस्टर जो कि आप लोग बोल के दिखाएंगे. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं टंग ट्विस्टर बोलने के लिए या इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 03000113488. इसके अलावा आप लोग मुझे सिंपली मैसेज भी कर सकते हैं. जी, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और इसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है, GFM88 के पेज पे आपको मिलती है पोस्ट पब्लिश की गई, उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. और कॉल्स भी हम आप लोगों की लेना स्टार्ट करेंगे. इस सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर, हेलो हेलो. ओके जी, हेलो, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है. हेलो. ओके जी, हेलो, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. ओके, 03000113488. नेक्स्ट कॉलर, हेलो, हेलो. ओके जी, आवाज क्यों नहीं आ रही है. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कौन?
1: तुबा.
0: तुबा कैसे, ठीक ठाक?
1: माशाल्लाह ठीक भी हूँ और नहीं भी.
0: ठीक भी है और नहीं भी है, चलें जितना नहीं है आप अल्लाह करे कि ठीक हो जाएं, ठीक है.
1: हाँ.
0: अच्छा, मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुन रही है?
1: हाँ, पर आज टंग ट्विस्टर मिस हो गया.
0: टंग ट्विस्टर बोलेंगी?
1: नहीं था, मिस कैसे करते
0: मैं बताऊं?
1: हाँ, एक बार
0: बताऊं?
1: जी
0: चले, एक बार बताऊंगी. आपने कहना है कि साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
1: बहुत लंबा है.
0: नहीं नहीं, लंबा नहीं है, इजी है. साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में
0: सजाई. यस,
1: साजिद ने 700 सुइयां संदूक में सजाई.
0: नहीं, साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
0: यस,
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल के संदूक में सजाई.
0: यस,
1: साजिद ने 700 सुइयां संभाल के संदूक में डाल के सजाई. साजिद ने 700
0: सुइयां. ओके, काफी है. और कुछ कहेंगी?
1: हाँ,
0: टंग ट्विस्टर मिस हो गया. कोई बात नहीं, थैंक यू तुबा. कुछ और या मैं आगे चलूँ? ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू. 03000113488. ओके, नेक्स्ट कॉलर, हेलो.
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: हाफिज लखनऊ.
0: हाफिज लखनऊ भाई, कैसे, ठीक ठाक? जी मैं भी बहुत अच्छी. मुझे बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुनाएं, बोलेंगे?
2: जी बोलो, बताइए.
0: बोले,
2: बताइए, रिपीट बोलेंगे.
0: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संदूक में सजाई.
2: साजिद ने 700 सुइयां संभाल कर संभाल कर
0: ओके स्टॉप, और कुछ कहेंगे?
2: हमारे दोस्त से
0: जल्दी से
2: हाँ फिर बताते ये दिन
0: आप और कुछ कहेंगे?
2: हमारे दोस्त से
0: जल्दी से

0: next caller. Hello.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. This is Ali. Kaise theek thaak?
1: Ji ji, alhamdulillah. Mere kya haal hai aapke?
0: Ji, main bahut achhi hu. Mujhe batayega ki aap program sun rahi hain?
1: Nahi gaana mam.
0: Nahi sun rahi. Tongue twister batao, bolengi?
1: Nahi gaana mam. Main bahut sad hu.
0: Aaj bahut sad hai. Kyun sad hai?
1: Haan, wo main request kar rahi hu sabko. जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो मेरी मम्मी के लिए दुआ करें. मेरी मम्मी ठीक हो जाए. मेरी मम्मी की बहुत तबीयत महसास हो गई है और मेरी मम्मी की बिल्कुल तबीयत खराब हो गई है. सब जो भी सुन रहे हैं ना, मुझे सब आ कहता है मेरी मम्मी के लिए दुआ करें. पर पैन मनाती मेरी मम्मी के लिए दुआ करें, मेरी मम्मी ठीक हो जाए.
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वालदा बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी. सब सुनने वाले जितनी भी सुन रहे हैं जरूर दुआ करेंगे. मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और अल्लाह पे यकीन रखना है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. ठीक है मिसेज? बिल्कुल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अम्मी का भी ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. और मिसेस अली की वालदा जो कि उन्होंने बताया उनकी तबीयत खराब है, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं काइंडली काइंडली दुआ करें. और हमें नहीं पता होता कि हमारी दुआ कब किसके लिए कबूल हो जाए, किसके हक में कबूल हो जाए. तो बिल्कुल दुआएं करनी चाहिए और दुआओं के लिए कहना चाहिए. क्या पता किसी की दुआ किसके हक में कब कबूल हो जाए. ठीक है, तो ये दुआओं के रंग होते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉलर. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप मुझे बताएं कौन और कहाँ से? ओके जी, गाजी खान रेंद.
2: जी जी.
0: टांग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
2: हाँ जी
0: बोले.
2: साजिद ने सात दुनिया संभाल कर संतुलन सजाई. साजिद ने सात दुनिया संभाल कर सजाई. साजिद ने सात दुनिया संतुलन सजाई. साजिद ने सात दुनिया संतुलन संभाल कर सजाई. साजिद ने सात दुनिया संभाल कर संतुलन सजाई.
0: ओके जी, वेरी वेल डन. और कुछ कहना है?
2: अल्लाह का शुक्र है,
0: खैरियत है. ओके, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज. इसी के साथ हम चलेंगे एक अदर सॉन्ग की तरफ और सॉन्ग मेरे पास मौजूद होगा बहुत ब्यूटीफुल. और ऐसे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपको पूरे प्रोग्राम में सुनाती ही रहूंगी. तो हम प्ले करने जा रहे हैं रोमांटिक नंबर इन द सिंधी वर्जन. Stay tuned.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
4: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ बुड़ी 331 5 5 786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसाना आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरह का कार्य से जो कि आप कर भी रहे हैं. कमेंट्स बहुत सारे लोगों के मुझे रिसीव हो चुके हैं और कमेंट्स को हम एंटरटेन करेंगे इस गाने के साथ. अच्छा नूर हुसैन तुनिया ने हमें कमेंट किया है लाड़काना से. सचर रुखसार गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस टेक केयर. आपका शो बहुत जबरदस्त है थैंक यू. आदिल हुसैन कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आई हैव प्लेड अ सॉन्ग गुड सॉन्ग. ओके थैंक यू सो मच कि आपको मेरा प्ले किया हुआ गाना पसंद आया है. बरकत रमजानी जमाली हमें सुन रहे हैं. मोहम्मद साले लगारी हमें सुन रहे हैं. इसके अलावा हमें मैसेज रिसीव हुआ है सहर गुलाब लगारी से. शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फायजा अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनेन जहरा और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. आपका शो सुन रहे हैं बाजी. आपकी कंपेयरिंग अच्छी है. शो शौक से सुनते हैं. ओके जी थैंक यू सो मच कि आप शो शौक से सुनते हैं. ऐसे ही शौक से सुनते रहे एंजॉय करते रहे. इसके अलावा गाने में मजा नहीं आ रहा. नेक्स्ट प्ले करें क्या? नेक्स्ट प्ले करते हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे,
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: PG beautiful song. वापस आ चुके हैं जी शो के लास्ट ब्रेक के बाद और लास्ट हमारा जो सेगमेंट होता है जिसमें हम लास्ट एंड लकी कॉलर्स को एंटरटेन करते हैं 03000134888 लास्ट एंड लकी कॉलर चेक करेंगे कॉलर कहाँ से जी हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन बात कर रहे हैं
1: जी हम बात कर रहा हूँ
0: जी एम भाई मुझे बताएं आज की अच्छी बात
1: आज की अच्छी बात आपने जो ये दवा मांगी है मिसेज अली की मदर के लिए तो सबसे मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ मिसेज अली की मदर के लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अदा करें और सेकंड ये कि मेरी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है आपकी आवाज सुनाई देती है प्लीज आप अपना माइक दुरुस्त करें ये मेहरबानी होगी आपकी
0: माइक दुरुस्त करें
1: आवाज आती है आपकी भी आपकी मेरे को मेरी आवाज सुनाई देती है
0: ओके जी थैंक यू सो मच बहुत सारा ख्याल रखना 03000134888 ओके एक और लास्ट एंड लकी कॉलर हेलो
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम
0: वालेकुम अस्सलाम जी कॉलर कहाँ से
2: जी मैम सागर बात कर रहा हूँ
0: सागर भाई आज की अच्छी बात क्या है
2: तोबा है
0: क्या है
2: मैंने कहा तोबा है मैम आज की जो साल मिलाना चाहिए सब लोग हाथी को जो है रक्षा दक्षिणा के बराबर है तोबा
0: कॉल नहीं लग रही दो बार तो लग गई आपकी दूसरी बार लगी है ना
2: दूसरी बार लगी तो पहली बार आपने सॉन्ग गजल नहीं सुनाई मैंने
0: अच्छा हाँ गजल नहीं सुनाई देखे
2: बोल रहा हूँ हाथी को जन्म रखे तो बैठाने में बराबर है
0: चले गजल आपको जरूर सुनाएंगे मुझे बताएं आज की अच्छी बात
2: आज की अच्छी बात क्या है सब समझते हैं अच्छी बात क्या किसको समझाई है
0: सब समझते हैं अच्छी बात किसी को नहीं समझानी सबको पता है अच्छी बात
2: अच्छी बुरा में सब समझते हैं
0: अच्छा बुरा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना अच्छा बुरा सब लोग सब समझते हैं
2: जी जी
0: चले ये भी अच्छी बात है थैंक यू सो मच अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी एंड मैं प्ले करने जा रही हूँ एक और सॉन्ग

संभालो हमें, खोए हैं हम, बचा लो

Okay, beautiful song. और song के साथ साथ आज का जो हमारा टंग ट्विस्टर वाला सेगमेंट रहा है डैड इज बोलो तो माने, और बोलो तो माने में किसने आज टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाया है, उसमें हमारे पास दो विनर्स हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया है, और उनमें से हैं जी एक तूबा, तूबा ने अच्छा कहा है। इसके अलावा जी गाजी खान रिंद ने हमें बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया। सो ये दोनों हैं आज के सेगमेंट के विनर, और इसी के साथ हम फाइनली लेंगे आपसे इजाजत। इंशाल्लाह मेरी आपसे चिटचैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे तक, और कल इसी प्रोग्राम में सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आज से नमक भूलिएगा, जिंदगी गुलजार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन्स आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: فصل کی سر مست دھرتی
1: فاتح مہران سنت.
2: It's 1 p.m. This time.

तक फजल चौधरी चाह वायद नए माली साल की बजट 12 जून जुमेवारे डी कौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब माली साल 2026 27 के बजट पेश कंदो। सागे डी बजट सेनेट में भी पेश थी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल जो इजलास टियों भेरो मुलतवी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल जो हाने इजलास सुभाणे थींदो। इजलास में पीएसडीपी समेत बजट जो अहम मामलन की मंजूरी डी वेंदी। जरियन मूजिब वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतन के इजलास के वक्त बाबत आगाह कर छो। इजलास में चैनी सूबन जहा वा वजीर शिरकत कंदा। आजाद कश्मीर के वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान जो वो वजीर भी इजलास में शरीक थी। तरक्याती बजट की मंजूरी डी वेंदी। भारत पाबंदी मड़ियल टीटीपी ए बीएलए की प्रॉक्सी तौर इस्तेमाल कर रो है। गड़ियल कौमन में पाकिस्तान के नुमाइंदे आसम इफ्तखार जो अफगानिस्तान सूरतहाल के इजलास के खिताब। आसम इफ्तखार भारत अफगानिस्तान की मदद करण की आड़ में पाकिस्तान में अदम इस्तकाम की साजिश में मुलस है। पाकिस्तान दहशतगर्दी हमलों में खामोश नो रही सके। कौमी सलामती आवाम के तहफ ला जिथे भी जरूरत हूंदी जवाब दींदी। लबनानी फौज के सरबराह जनरल रोडल्फ हेकल जी जीएसक्यू आहमद फील्ड मार्शल सिद आसिम मुनीर से मुलाकात। गड़ियल दिलचस्पी वाले मामलों खिते के तब्दील सूरतहाल दिफाई सहकार ए फौजी लागापन के खती डेण से गाल बोल। फील्ड मार्शल पारा लबनानी फौज से दिफाई सहकार के खती डेण वाले अजम जो वर्झाओ। लबनानी फौज सरबराह पारा पाक फौज के पेशेवरान सलाहतन की सारा खिते में अमुन इस्तेकाम वाली कोशिशों के भेटा पेज। आईएसपीआर मूजिब जीएचक्यू पहुंचने लबनानी कमांडर इन चीफ के पाकिस्तानी फौज दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।

अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान से डीह बिन में सुठो मुआदो थे पूरी उम्मीद वॉशिंगटन में साफिन से ईंदे सदर ट्रंप तो विच ओभर में अमन मुआदे वाली कोशिशों आखिरी मरेले में आन बिन कंट्रीन डीह में सुठो मुआदो थे तो ईरान के नाकाबंदी बरकरार है तेहरान तेल विक्रो नो करे

0: गालियूं जंग जो हिस्सो आहे ना।
1: आप सुन रहे थे GAFM।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM
4: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network.
4: इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडियंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप व्हाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट by Biocon International Pakistan.

है, हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है आजकल। हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के बिना शायद जिंदगी जो है ना हमें अच्छी लगेगी भी या नहीं। तो मेरा ये आज आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि आप लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए, यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएं कि उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना मोबाइल है ना ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक और शेयरिंग दिया करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सकें कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाइट एज प्यूरी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है, और उसके अलावा जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली आप लोगों को मार्केट से मिलने वाले हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे मुझे बताइए, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर आपके गोट में आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के, फर्ज कर लें जरा अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता। ओके जी, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, खुश शाहीन जी सफा खुश ताम बताया की आयो, कहते हैं कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, बिल्कुल जी। और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आ कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। और हिदायतुल्लाह कहते हैं हमारे कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है सिदरा, आज ये सॉन्ग चला दी असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थी, लिंक भेजू, बिल्कुल जी आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। और वफा मीर मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और मौलाई मुजाहिद बाजार में सुन रहे हैं ठूफ चूसल से, कह रही असलामेकुम सिडो जी, केड़ा

अदनान नूर हमें सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते आरजे गोइंग वेरी वेल एनर्जेटिक स्टार्ट. बहुत शुक्रिया अदनान नूर, आप हमारे साथ मौजूद हैं. और हिदायतुल्लाह कहते हैं अदीश तूने नोट किया है कि तुम्हारा फ्रिज चलता तो है लेकिन घर से बाहर नहीं चलता.

हाँ कुछ चीजें ऐसी होती जो चलती तो हैं लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती तो टेंशन ना ले। और किशोर भाई कहते हैं कि हमें तो आदत है इंतजार करने की, तो तुम करवाती रहो। हम करते रहेंगे। सलाम आदि खुश आयो। यस माँ ठीक था बजायो। अज भला आदि चाहे तो वह खैर था। और कहते ओ नो ये क्या पूछ लिया आज। बिल्कुल जी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछ लूं। अशोक कुमार हमें सुन रहे हैं। अशोक कुमार भाई है।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, बुड़ी 231-525-786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

आशा हमारे साथ मौजूद है मीरपुर खास से. आप हमारा शो सुन रहे हैं. वेलकम जी. हिदायत अल्लाह कहते हैं अच्छा चलें ठीक है. ऐसन कहते हैं कि असा भी मोटी चूं था. चलें ठीक है ठीक है. लगे तो तुम मोटी आया हो. और किशोर भाई कहते हैं कि अदी टॉपिक कदे हैं कहते कावड़ इंदी आ या पैकेज खत्म थी वने तो एकड़ो डी गुजारी दो आया बाकी हफ्तो छा एक सेकंड भी गुजारण दुख्यो है. उई तो गाला अगर तुम फर्ज करो तुम जड़न मानन का हफ्तो मोबाइल वरती वने तो तुम जो हफ्तो किया गुजरंदो सोचने वाली गाल है. और अशफाक अली हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम अशफाक. आपको खुश आमदीद कहते हैं. और वासु भाई कहते हैं मुझे प्यारी अदी सलाम. वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा खुश आयो. अच्छा मोलाई मुजाहिद बोजार कहते हैं टॉपिक ये सीन मेरे साथ हुआ था. पापा ने मुझसे मोबाइल छीना था. बोले पढ़ाई पर ध्यान दो. मैंने घर के कुछ बर्तन तोड़े और फिर उसके बाद मोबाइल वापस मिल गया आपको. ये ट्रिक तो मेरे ख्याल में लड़कों का जो ना बड़ा वर्क करता है कि बस उनको थोड़ा गुस्सा आ जाए वो घर के बर्तन तोड़ने लग जाते हैं. तो ऐसा मत किया करें भाई. और न खा अलावा जेको आ कहते हैं गानो हाँ गानो हलाएं तो ताजो थोड़ो सबर करना कयो. दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. और न खा अलावा वासु भाई कहते अदी सडो जवाब मां पैंजन कबूतरन सा हफ्तो गुजारे वेंदस. उन्हन के उडारण दानो डियण में उन्हन सा टाइम पास थी वेंदो आ. इहा भी गाल है कबूतराई मानू अलग ही दुनिया जा मानू हुंदा. सही है बाबा सही है. एंजॉय करो पानी जिंदगी. और नजीर खोसो में सुन रही है बलोचिस्तान से. भाई आपका भी बहुत शुक्रिया. वेलकम. और शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है. हेलो. अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. अच्छा उनका अलावा हैं जी दर्दे दिल कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते. लोग हिम्मत हार जाते हैं. अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो सूरज भी हर रात के बाद तुलू होता है. अपने ख्वाबों पर यकीन रखो क्योंकि नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक कोई उसे मुमकिन ना बना दे. बिल्कुल जी आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है. दर्दे दिल आपका बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ मौजूद है. हिदायतुल्लाह कहते हैं न बाबा ओनली जियो. अच्छा दिलीप कुमार मेंगवार हमारे साथ मौजूद हैं. दिलीप कुमार भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं. और तमाम के सारे शो पसंद अच्छी पयो सो मोहब्बत हुआ प्यारे भावन जो. किशोर भाई कहते हैं माँ अच्छा वगा पाता हूँ तो घोट लगता हूँ. यह गाल है जदे मर्द जो है अच्छो वगो पाइन आ वाकई घोट लगन है. इन लाइन मर्द जो शान आ बाबा अच्छो सूट पाइन करो सोना लगता है. आई वरी जदे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइंदा पो तो बाबा छा गाल करे तवाजी. आई जेके मानू अन्या ताई व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कोन कन पया सो उनन के चवंदा बाबा छा था सोचू एतरो न सोची ना कयो. जेको करणो आ सो करणो आ. व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणो आ. आई व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवाजे ला हर तरह जो प्रोडक्ट मौजूद है. यानी कि हाने तवाजी का भी बहाने बाजी न हलंदी छो त इते तवाके हर एक प्रोडक्ट मिले थो जेमे तवाजे ला नाइट क्रीम भी आहे तवाजे ला फेयरनेस क्रीम भी आहे साबुन भी आहे फेस वॉश भी आहे एक्नी ट्यूब भी आहे अन्या बे छा कपेव जेके जेके मानु आन अलग अलग मसलन सा फेस कन पया उन्हें चेहरे ते अलग अलग मसला आहन जी तवाजे चेहरे ते दाणा आहन या फिर तवाके का सुठी नाइट क्रीम नथी मिले तवाके का फेयरनेस क्रीम नथी सुठी सूट करे तो बाबा तवाजे लाई व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे. सो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जी अगर असा गाल कयूं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका एवोकाडो एलोवेरा आई मिल्क सा तैयार कई वई आहे ही टई चीजों ने जे अंदर एड कयूं अथस तदे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम तैयार थी आहे. आई व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तवाजे स्किन के फ्रेश बणाईंदी आहे फेयर बणाईंदी आहे क्लियर बणाईंदी आहे सोनो बणाईंदी आहे. सो मर्द हज़रात हुजन या ख़वातीन तवां बई इस्तेमाल करे सगो था. उनका अलावा जेके मानू दाणन जी वजह से परेशान आए शदीद वारो परेशान आए तो तवां जला डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तैयार कयो आहे. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे ही बबा डाढो जबरदस्त ट्यूब थव उनन मानू जला खास करे जेके पाने चेहरे जे दाणन जी वजह से परेशान आए. सो अगर तवां भी एक्नी के खत्म करण चाहियो था तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तवां जला मौजूद आहे. आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब. आई तवां जे एक्नी सा फाइट कंदो आहे. तवां जे एक्नी खां अलावा तवां जा निशान आहे जेके फेस ते उहे खत्म थी ना आहे. तवां जे चेहरे ते कोई कट जो निशाना कोई सड़न जो निशाना कोई केतरो पुरानो निशान आए जेके तमा रिमूव करण चाहियो था तो तमा बिल्कुल डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करे उन खां छुटकारो हासिल करे सको था. उन खां अलावा इस्तेमाल करण तरीके कार भी बुधाया थी पर पहिरियां सब प्रोडक्ट जे बारे में तो बुधी वठो. आई तमा जे लाए व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मौजूद आहे. व्हाइट एश जो फेस वॉश भी मौजूद आहे. सोप जेका वो एलोवेरा एवोकाडो ए मिल्क सा तैयार कयो वयो आहे. बाकी जेको फेस वॉश आ उन जे अंदर विटामिन सी मौजूद आहे. ठीक आ इहो इनन बिनिन में डिफरेंस आहे. उन खां अलावा अगर तमा
सोप लॻाईंदा आहियो त सोप लॻाईंदा, अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा आहियो त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा, ईज़ी। ऐं अगरि तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जे बारे में नथा ॼाणो त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त वाइट एज लवली क्रीम हिकु उहा वाहिद क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम सां गॾो गॾु हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड कई वई आहे। यानी कि हिन में ॾिसो था तव्हां जे लाइ केॾो मतिलबु हिननि फ़ाइदो सोचियो आहे। त जेके बि असांजा सोणा सोणा लिसनर असांखे ॿुधनि पिया, जेके जेके सोणा माण्हू पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखणु चाहिनि था, त हुन जे लाइ बिल्कुलु उन ई तरीक़े जो प्रोडक्ट हुजणु लाज़मी आहे। त अगरि तव्हां बि वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करणु चाहियो था त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे त बाबा वाइट एज लवली क्रीम जेका आहे हीअ हिकड़ी फेयरनेस क्रीम आहे, पर सिर्फ़ फेयरनेस क्रीम न आहे, हिन जे अंदरि अहिड़ियूं चीज़ूं एड थियल आहिनि जेका रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सां तयार कई वई आहे, जंहिंजे अंदरि 30 वाइटमिन जा कैप्सूल एड आहिनि। 30 वाइटमिन जा कैप्सूल, यानी कि तव्हांजी स्किन ते कोई बि वाइटमिन जी कमी आहे त उहा पूरी थी वेंदी जॾहिं तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमालु कंदा। हिन जे अंदरि वाइटमिन डी आहे, वाइटमिन ई आहे, वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन B3 आहे। उन खां अलावा सनस्क्रीन बि एड अथसि, जीअं तव्हांखे अलॻि सां सनस्क्रीन लॻाइणो न पवे। अहिड़ी गर्मी जे मौसम में तव्हांजी स्किन ते सनस्क्रीन बि लाज़मी ज़रूरी हूंदो आहे। अगरि तव्हां सनस्क्रीन नथा वठो या फिर नथा इस्तेमालु कयो त तव्हांखे टेंशन वठण जी ज़रूरत न आहे, तव्हां वाइट एज लवली क्रीम लॻाए सघो था। वाइट एज लवली क्रीम तव्हांजी स्किन ते ग्लो बि ॾींदी ऐं तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट बि कंदी उन सिज जे असरात खां, जेके सिज जा असरात तव्हांजे चेहरे खे नुक़सान पहुचाईंदा आहिनि, सम्झो था। सो वाइट एज लवली क्रीम तव्हां ॾींहं जो लॻाए सघो था, राति जो लॻाए सघो था, नंढा ॿार हुजनि, वॾियूं मायूं हुजनि, मर्द हुजनि, कुराड़ा आहियो, तव्हां सभु हणी सघो था, छो त वाइट एज लवली क्रीम जेका आहे न एतिरी ज़बरदस्त क्रीम आहे जेका तव्हांखे मज़ो ॾेई छॾींदी। So white ash लवली क्रीम तव्हां लॻायो ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ाई चमकंदी वधंदी। उन खां अलावा ॿियो छा आहे, उन खां अलावा सोप ऐं फेस वॉश जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उहो बि ऑल स्किन टाइप जे लाइ तव्हां बिल्कुलु हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो। ऐं बाक़ी हा लॻाइण जा तरीक़ेकार छा आहे त बिल्कुलु लॻाइण जा तरीक़ेकार इहे ई आहिनि त अगरि तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो था त वाइट एज जी ब्यूटी क्रीम तव्हां राति जे टाइम इस्तेमालु करे सघो था, छो त हिकिड़ी नाइट क्रीम आहे। राति जे टाइम तव्हां इस्तेमालु कयो, उन खां अलावा फेस वॉश तव्हां पहिरियां लाज़मी कजो। फेस वॉश करे उन खां पोइ तव्हां वाइट एज ब्यूटी क्रीम अप्लाई करे सघो था। ऐं उन खां अलावा अगरि तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लॻाइण चाहियो था तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि उन्हनि खे ख़तम करण जे लाइ, त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब राति जे टाइम इस्तेमालु कयो। उन खां अलावा तव्हां फेस वॉश लाज़मी कंदा कयो। कोई बि प्रोडक्ट तव्हां लॻायो था, तव्हां वाइट एज लवली क्रीम हणो था या डॉक्टर पिंपल ट्यूब हणो था या वाइट एज ब्यूटी क्रीम हणो था, इन्हनि खे इस्तेमालु करण खां पहिरियां तव्हांखे पंहिंजो मुंहुं लाज़मी धोइणो आहे। सही आहे, तव्हां पंहिंजो मुंहुं धो, पंहिंजे फेस खे सफ़ा क्लीन कयो, क्लियर कयो, उन खां पोइ तव्हां प्रोडक्ट अप्लाई कयो पंहिंजी स्किन ते, तॾहिं ई जेको प्रोडक्ट आहे उहो तव्हांखे सही तरीक़े सां रिज़ल्ट ॾींदो आहे। सो प्रोडक्ट खे सही तरीक़े सां इस्तेमालु अगरि तव्हां कंदा त तव्हांखे बिल्कुलु सुठो रिज़ल्ट मिलंदो आहे। सो सुठे रिज़ल्ट हासिल करण लाइ तव्हांखे सही तरीक़े सां इस्तेमालु करणा पवंदा। सो बिल्कुलु सुनाब इस्तेमालु कंदा हलो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा हलो, ऐं बिल्कुलु तव्हां बि हसीन ऐं प्यारा थियणु चाहींदा हूंदा। सो तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था। तव्हांजे एरिया में, तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजी सिटी में नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। ओके जी, डायल कीजिए हिकु नंबर और साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती जाइए। और जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब भी देते जाइए। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें आप लोगों से आपका मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करेंगे उस एक हफ्ते में अगर आपका सेल फोन आपके साथ ना हो तो।

प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा, आपकी खातिर मेरी आपी और भाभी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सोप के साथ इस्तेमाल कर रही है और मैं खुद व्हाइट एश लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है। और जी ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना। इमरान भाई क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और उसके अलावा हेंची ये कहते हैं बाजी टॉपिक का जवाब है मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा। पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है। और इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया। फकीर मोहम्मद हमारे साथ है पाक आर्मी पनो आखिर से, कहते हैं साकी आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है माशाल्लाह, खुश रहें। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर अस्सलाम वालेकुम, बाजी टॉपिक है मोबाइल के बिना एक हफ्ता क्या एक मिनट भी नहीं रह सकता, अब आगे जियो करे हाजिर साइन जियो था कहूँ। और ये हमारे साथ एक कौशल कहती है जन्नत आप कैसी हैं, आपकी जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कौशल आप कैसी हैं। और कहती हैं वो तो मैंने बताया था ना ये आपकी गलती है कि आप शो सही से सुनती नहीं है। और उसके अलावा क्या कहती हैं, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, कल चले फिर आपने साइलेंट होकर शो सुना फिर बताएं आपको कैसा लगा। अच्छा जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज जो ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और ये कौशल कहती है जन्नत अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे, मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, मैं वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ। अच्छा साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ, आपका शो मस्त है जैसे ठीक है। और कहती टॉपिक भले ले जाओ मैं तो चली जाऊंगी अपने गांव। हाँ भाई गांव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। एवं कहती दिलबर आप ही आपकी कल से मेरी तबीयत वागे थोड़ी सी अजीब हो गई है, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल, आप दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाओ। और न खा अलावा जी को आता जी की मानो असा के फेसबुक ते बुधो पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो और तमाजी शेयरिंग मुखे थोड़ी कम नजर अचे पई ई छू कंदा आयो। अच्छा शेला कुल जो गानो हलायो थम मैं शेला कुल जे गाने हलाने संगड असांगे लुबना नजर अच्छी वही। लुबना कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ। ओके जी आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं, नाइस शो एंड नाइस सॉन्ग शेला गुल का। हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा था कि शेला का गाना सुनकर आप जरूर आएंगे।

0: हाँ जी वठी तो अच्छे वठी तो अच्छे सबर कर समंदर गांगरू हमारे साथ है। समंदर भाई कहते हैं हाय आरजे एंजल स्टेट आप कैसी हैं। नजीर अहमद गांगरू हमारे साथ हैं। ओके जी वेलकम वेलकम। और आदिल कहते हैं कि जेकडे मुझो मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमा आईने सा सेल्फी कढंदस पोए समझ में इंदी तो अपलोड कंदासी कडे अपलोड कदो जदी आईने सा सेल्फी कढंदा तो अपलोड किए थी आई तो हर 5 मिनट बाद खीसे में हथ हणंदस मोबाइल मिलंदो तो पंजो कन सिकींदस अमर के चवंदस मुझो दिमाग हैंग थी वयो आहे री स्टार्ट जो बटन काडा आहे किथे आहे अच्छा आई पाड़े जे बारन खा पुछंदस भाऊ वाईफाई जो पासवर्ड होए चवंदा चाचा असा वट भी नेट नाहे हफ्तो पूरो थिंदो तो मोबाइल के इए भाकुर पाइंदस जी गुम थेल प्यारो वापस मिल।
1: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर KTN News।

क़ौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वगे तलब सैनेट इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वगे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते इजलास तलब कया। पार्लियामेंटी मामलनि वारे वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून जुमे वारे ॾींहुं क़ौमी असेंबली में पेश कई वेंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻिए ॾींहं ते बजट सेनेट में पेश थींदी थी।

क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास टियों भेरो मुलतवी। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो हाणे इजलास सुभाणे थींदो। इजलास में बजट जे अहम मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। ज़रियनि मौजि वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतनि खे इजलास जे वक़्त बाबति आगाह करे छॾियो। इजलास में चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर शिरकत कंदा। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान जो वॾो वज़ीर बि इजलास में शरीक थींदो। तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाक़ात जो इम्कान। सूबनि खां वफ़ाक़ खे फंड्स जी मुंतकली ते ॻाल्हियूं थींदियूं। सिंध हुकूमत फंड्स जी दस्तियाबी बाबति सदर खे आगाही ॾेई छॾी। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाइ वधीक बजट रखण जो इम्कान। लबनानी फ़ौज जे सरबराह जनरल रोडलिफ हेगल जी जीएचक्यू आमद। फील्ड मार्शल सिदास मुनीर सां मुलाक़ात। गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फ़ौजी लाॻापनि खे वधीक ख़ती ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लबनानी फ़ौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक ख़ती ॾियण वारे अज़म जो वर्चाओ। लबनानी फ़ौज जे सरबराह पारां पाक फ़ौज जे पेशेवरनि सलाहियतुनि जी साराह। खिते में अमुन ऐं इस्तक़ाम वारनि कोशिशुनि ते भेटा पेश। ISPR मूजिब GHQ पहुचण ते लबनानी कमांडर इन चीफ खे पाकिस्तानी फ़ौज दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो।

अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान सां ॾींहं ॿिनि में सुठो मुआदो थियण जे लाइ पुरउमीद। वॉशिंगटन साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे सदर ट्रंप चयो त विच ओभर में अमन मुआदे वारियूं कोशिशूं आख़िरी मरहले में आहिनि। ॿिनि खां टिनि ॾींहनि में सुठो मुआदो थी सघे थो। ईरान जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। तेहरान तेल वेकिरो नथो करे सघे। ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जे ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ालन बि मज़मती महाज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइते न हटंदो। अमरीका एतबार जोगो नाहे। लबनान ते अगभराई थी त ॻाल्हियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो आहे त अमरीका सां मुआदो कीअं

0: में शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जे मसूदे में लबनान समेत सभई इलाका शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे, पर कोशिशूं जारी आहिनि। अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह, ॿई पायलट महफ़ूज़ रहिया। सदर ट्रम्प अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थियण जी तसदीक कंदे चयो आहे त हादसे सबबि कंहिं बि शख़्स खे को नुक़सान न आहे पहुतो। हेलीकॉप्टर ईरानी फ़ौज जी फायरिंग सबबि तबाह थियो आहे या हादसे जो शिकार थियो आहे, जांच जारी आहे। सिंध हुकूमत पारां कराची जे न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स लाइ सहूलियत देश क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर सर्जरी न मेमन सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास थियो। ट्रांसपोर्टर्स लाइ वन विंडो सहूलियत क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। सर्जरी न मेमन चयो त क़दम जो मक़सदु 30 जून 2026 ताईं कमर्शियल गाॾियुनि खे डिजिटल ऐं ऑटोमेशन निज़ाम में तब्दील करणु आहे। सिंध हुकूमत अवामी ख़िदमत में ट्रांसपोर्ट शोबे में मुकमल डिजिटलाइज़ेशन जे नज़रिये ते कम करे रही आहे। सिंधा कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी नतीजनि जे ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्तनि ते ॿुधणी दरख़्वास्त गुज़ारनि तरफ़ां तरमीमी दरख़्वास्त दाख़िल कामयाब कराइण वारे उमेदवारनि खे धुर बणायो वियो आहे। अदालत कमीशन खां लिखत ऐं ज़बानी इम्तिहाननि जो मुकमल तरीक़ेकार तलब करे वरितो। समूरा तफ़सील ऐं तरीक़ेकार ईंदड़ ॿुधणी ते पेश करण जो हुकम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्म्स आपके स्किन पर जमा हो जाते हैं जब आप उन्हें रात को भी रिमूव नहीं करते हैं, रात को भी फेस वॉश नहीं करके सोते हैं, तब आप लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना ये एक्ने आ जाते हैं, रिंकल आ जाते हैं और निशानात बन जाते हैं और आपकी स्किन जो है ना वो मरना स्टार्ट हो जाती है। जब आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा जिंदा रहे, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, तो आपने रात के टाइम जो है ना फेस वॉश लाजमी करना है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। तो गर्मियों के सीजन में तो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि भाई फेस वॉश इजी से हो जाता है, आराम से हम कर लेते हैं, लेकिन सर्दियों के सीजन में थोड़ा सा आप सोचते हैं कि भाई नहीं करते। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो, आपने रात का फेस वॉश बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। रात के टाइम फेस वॉश करें, सुकून से अपनी स्किन को क्लियर करें, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना शुरू करें। और जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तब आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। तो इस्तेमाल करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, तो लाजमी आप ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और इसी के साथ साथ अगर आपके एरिया में, आपकी सिटी में, आपके गोट में नहीं मिल रही, तो आपने डायल करना है 03 15 799 0595।

ओके जी, ए एम अंसारी कहते हैं यूप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप इन नवाबशाह, मुझे फ्री में दिलवाए ना। अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है। और कहते हैं मुझे भी गोरा चिट्टा होना है प्लीज, मूलाए पारत करायो वाइट एश आईडी स्किन वारन के कसम अथव मासी चपरान जो, न मासी चपरान जो कसम न जो। खैर तवां जे लाए जेको आ न असा अवेलेबल कराए छडिया, त हाने तवां के जेको आ न फ्री में भी जाराइंदा, टेंशन न वठो। बस तवां जेको आ त चिटे थेण जे लाए थोड़ो मेहनत कंदा कयो, ऐ तवां के या चीज खबर होजन घुरजे त मार्केट में केड़ा केड़ा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आ, ऐ केड़ा केड़ा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होजन सा गड उ तवां जी स्किन जे लाए जरूरी आ न यार। त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तवां जे एरिया में मिलन था त बिल्कुल तवां के जारींदा, तवां गिफ्टिंग वो सिस्टम स्टार्ट कर, थोड़ा टाइम गुजरन दियो।

0: अच्छा अशफा कहते हैं कि सिदरा लाहौर में कड़े दुकान था मिलंदा प्रोडक्ट लाहौर में तव मालूमात वठो न था मिलंदा पो मुखे बुधायो किथे किथे अवेलेबल नाइन बस अवेलेबल कराइंदा सी
1: कॉपी करे करे मानू चरिया थी व्याहि
0: अच्छा ऐसन कहते हैं पर तमहा शो न कयो तो पो असा के मोबाइल सी जरूरत नाहे अच्छा मानी अगर असा शो कयो था तरी ता मोबाइल जको इस्तेमाल कयो पया चलो या भी सुठी गाल या भी असा ने कामयाबी अच्छा ये अशफा क्या कहते हैं चले ठीक है ठीक है और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है रिहाना आपको वेलकम करते हैं और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है अनवर भाई तवाजो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो प्यार टॉपिक चौथा बो मसलो ना है पर तवाजो प्रोग्राम एफ बी की बुधंदस हाँ वाकई यहाँ सोचने वाली गाल ए एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे माँ ब्लैक थी वेंदस अल्लाह न कंदो तमा वाइट वाइट थी वेंदा साईं तमा थोड़ो सबर कर थोड़ो वेटिंग कयो सही छो तो कदें कदें माण्हुनि खे वेटिंग जो फ़ाइदो मिलंदो आहे सो वेटिंग करण बि सुठी ॻाल्हि आहे ऐं तव्हां जेको नंबर ते राबितो करे वठो ठीकु आहे अच्छा कुझु ॾींहं पहिरियां हिकड़ी ॻाल्हि थी हुई उहा मां तव्हां सां शेयर कंदसि पर हिते ॾिठो वञे त टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे वेठी वेठी यादि अची वई जॾहिं ए एम चयो त मूंखे फ्री में गिफ्ट ॾियारायो तॾहिं हिन ॻाल्हि ते जेको आहे मूंखे इहा ॻाल्हि यादि अची वई मां तव्हांखे ॿुधायां थी थोरो सबर कयो पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट वठण जी तव्हांखे जेको आहे न तव्हां सोचो था कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां वठी चुका आहियो

इस्तेमाल भी कयो पिया छो त जेके माण्हू अञा सोचनि था न उन्हनि जे लाइ इहो आहे त बाबा तव्हां जल्दी वेठो देर न कंदा कयो अगरि तव्हां बि देर कंदा त पोइ तव्हां बि ब्लैक ब्लैक थी वेंदा सो मां इहो नथी चाहियां त तव्हां ब्लैक थी वञो तव्हां व्हाइट व्हाइट हुजो ऐं तव्हां सोणा सोणा हुजो ऐं तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि ॿिन्ही जो इस्तेमाल कयो उन खां अलावा जल्दी मोटी अचां थी तव्हांखे तव्हां करे न वञो मां उही वञी उही अचां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए खूबसूरत होते रहिए।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
2: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो बताएं जरा मुझे कि अगर एक हफ्ते के लिए आप लोगों का मोबाइल ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से ले ही लेना चाहिए, ऐसे भागे लोगों को अगर मोबाइल दे देते ना लोग तो फिर वो वाकई जो है ना वो आतंक मचा देते हैं, तो ऐसे लोगों से मोबाइल ले लेना ही चाहिए तो बेहतर है। इसी के साथ साथ अगर आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके बारे में मैं पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहती हूँ और वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और आसानी से मुराद ये कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं। ओके, सो जब हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो कि भाई खूबसूरत बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप भी हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फार्मुलेशन से तैयार की गई है और पाकिस्तान में देखा जाए तो 2-3 क्रीमें ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। डॉक्टर से बिल्कुल जनाब इसे मालूमात के साथ साथ तैयार किया गया है, इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है जिसकी आप लोगों की स्किन के लिए नुकसान हो। तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी लाजमी ट्राई करके देखना है। तो डी स्किन फेस वॉश ओके हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, तो लाजमी लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए। नहीं नहीं आपको नहीं बोला था, आप तो नहीं, आप तो समझदार हैं, वो बात जरा किसी और की थी।

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ हैं मकसूद मलहा, आपको वेलकम करते हैं। साइमा मीर कहती हैं हर चीज अच्छी होती है, सोंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो और लोग तो और भी क्या बातें, प्यारे हैं जी माशाल्लाह। अब मेरी सिद्रा को ही देख लें, हाँ जी बस सिद्रा को ही देख लें। उसके अलावा नूरिस एंटोनियो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। साइमा मीर कहती है सिद्धू ये जुकाम गर्मी वाला, हाँ भाई गर्मी वाला जुकाम हो गया मुझे, ये वाकई खतरनाक होता है सर्दी वाले जुकाम से भी ज्यादा। तो बस दुआ कीजिएगा ठीक हो जाऊं जल्दी से। और उसके अलावा अच्छा ये गाना लगाया, ये स्पेशली हम शोनी को डेडिकेट करेंगे। शोनी

शोनी क्या कहते हैं? शोनी कहती हैं आप ही जान में भी आ गई आपके शो में, आप ही अभी लंच करके अपने रूम में आई हूँ और मेरा आप शो सुन रही हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपने क्या सोचा है, कब लगाएंगे?

अच्छा इमरान भाई, मुमताज मलिक का गाना चल गया ना एक, तो फिर ये वाला गाना आपका हम कल सुनेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इरम कहती है यार जवाब है, मैं मोबाइल से बेजार हूँ, अगर कोई एक महीने के लिए ले ले मुझसे मोबाइल तो मैं आपको MP3 में सुनूंगी और आपके पास SMS के लिए अरीबा से फोन लेकर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। क्या बात है, आपने तो पहले से सोच रखा है। चले बहुत बढ़िया। अच्छा प्लीज, मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम करते हैं आपको। और उसके साथ साथ हैं जी इरम कहती है, अच्छा बहुत शुक्रिया प्यारी। अच्छा ये फौजी पठान खान खोसू हमें सुन रहे हैं भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा मीर कहती सिडो ये वाला सॉन्ग बच्चे घर में खेलते खेलते गा रहे थे, तो एक बच्चे ने एक लफ्ज का मतलब पूछा, मैंने मतलब तो बताया लेकिन कहा के बाद आपका मैसेज जो है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है। साइमा

कोशिश करें ये कहा कि बाद में जो आपने कहा है वो जरा दोबारा भेजिए मुझे। हाँ भाई, जैसी गर्मी चल रही है तो मोहब्बतें गई भाई, जुती जरूरी है, ऐसे नहीं घूमा जाएगा।

जी बिल्कुल, ये गाना ट्रेंडिंग चल रहा है. और नखा अलावा जेको आसो के रसा सगड़ा. अच्छा गाना खत्म हो चुका है, सो हम यहाँ पर दूसरा वाला गाना लगाते हैं. ये जी गाना होने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा.

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा अलीजा टॉपिक का जवाब दे रही है कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर, कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती है, आपके मोबाइल से करती है, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दब? अच्छा किशोर भाई कहते मानू अला के साइलेंट थी शो बुधन था खूबी तो जड़ी आरजे जो नामुमकिन मु वी मिंट अला की पाण के रोकियो मां भी सोचा अला काडे वयो अदो मुखे लगे पे अज भी तां सुमी प्यायो न डी वांगे

अच्छा साइमा, तो गाना कौन सा था वो भी बताएं मुझे जरा। अच्छा सोनी कहती है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से लूंगी, क्योंकि मैं सारी चीजें वहां से लेती हूँ, अगर वहां पर ना मिले तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से परचेज करके जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे कितना आप लोगों का ख्याल है।

अच्छा एएम अंसारी कहते हैं सिडो मेरा खर्चा आपने बढ़ा दिया, कोई मुझे कह रहा है कि शाम तक मिल जाए वाइट एज के प्रोडक्ट्स। सच्ची बोले ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा खर्चा भी कर लिया कर। और वासु भाई कहते अदी सिडो असांजा ही बकला के तमा सा गड प्यारा गुजरंदा है, आई मुझा भी यकीन करो। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं एक हफ्ते के लिए मेरा कोई सेलफोन ले जाएगा, पूरा हफ्ता वो मुझे भी ले जाए अपने साथ। चले ये ठीक है। अच्छा आदिल तमाम गाना सुबह ही बुधंदी ठीक है।

हा बाबा एतरी ॻाल्हि ते छो नाराज़ थी वेंदा आहिनि, ढोल वरी पोइ मञीदा नही है। अच्छा ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाइए, डी स्किन फेस वॉश आपके लिए आप लगाइएगा, और साथ में व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। तो जनाब आप लाजमी जो है वो ट्राई करके देखिएगा। बिलाल अली कहते हैं हर रोज कोई आपके शो की लिंक मेरे आईबी में शेयर करता है, आज सोचा ओपन करके देख लूं। चलिए आपने बहुत अच्छा किया। वैसे तो अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होने को आ रहा है बिलाल, सो आपको वेलकम करते हैं, कल आप मुझे 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अरे किशोर भाई कहते नन तवान जो शो इत मुखे एक्टिव रखे थो अल्लामा सदको। मोहम्मद सुमान कहते आज का सवाल ना ऐसा है जवाब देने से पहले मायूस हो जाते हैं। बात वैसे सही आप कह रहे हैं। और दर्दे दिल कहती है पता नहीं क्यों, पता करवाए ना, मैं नहीं जानना था।

वाकई इतने सादा और बेवकूफ लोग हैं, कि जरा सी अपनाइए, थोड़ी सी तवज्जो और चंद मीठे अल्फाज मिले तो हम अपनी जात के सारे पर्दे खुद ही हटा देते हैं। दिल की वो बातें भी कह देते हैं जो बरसों खामोशी में दफन रहनी चाहिए थी। हमें ये गलतफहमी बिल्कुल हो जाती है कि सामने वाला हमें समझ गया है। यही वो मकाम है जहाँ दिल सबसे ज्यादा लुटता है, क्योंकि हर मुस्कुराहट सच नहीं होती, हर अपनाइयत खालिस नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं कि हमें खुली किताब बनाकर हमारे लफ्जों से अपने फायदे की मतलब निकाल सके। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब तलाश करते हैं। वो खुद को आपका खैर ख्वाह जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं होता।

ओके जनाब, से प्रोग्राम व्हाइट एज एंड एज इन ब्यूटी शो का जो वक्त है वो खत्म होने को आ चुका है। सायमा मीर, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे डाटा करी बच्चों को। और ये जी हजार खान भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गुलाम रहीम बलोच हमें सुन रहे हैं, आपको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच जी। ओके जी, और यहीं पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है डेली बेसिस के ऊपर। और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह हैं, जिनके फीडबैक्स रह चुके हैं उनसे माजरत करते हैं, जिनके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में उनसे जनाब यही कहूंगी कि कल आके आगे गाने लगा दूंगी। हाँ वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहीं मैं गजनी तो नहीं हो गई। मैं वाकई बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ और प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाली होती है लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ। वाकई लगता है कि मैं अब गजनी होती जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा वाला, मोकलानी ना है बाबू, सेन सलामत, सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वगे तलब, सेनेट इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वगे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते इजलास तलब करिया। पार्लियामेंटी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त नई माली साल जी बजट 12 जून ते बजट पेश करण जो इम्कान। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो इजलास टियों भेरो मुलतवी। क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जो हाणे इजलास सुभाणे थींदो। इजलास में PSDP समेत बजट जे अहम मामलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। ज़रियुनि मौजिबि वफ़ाक़ी हुकूमत सूबाई हुकूमतनि खे इजलास जे वक़्त बाबति आगाह करे छॾियो। इजलास में चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर शिरकत कंदा। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान जो वॾो वज़ीर बि इजलास में शरीक थींदो। तरक़ियाती बजट जी मंज़ूरी ॾिनी वेंदी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार छदर आसिफ ज़रदारी सां मुलाक़ात जो इम्कान। सूबनि खां वफ़ाक खे फंड्स जी मुंतक़िली ते ॻाल्हियूं थींदियूं। सिंध हुकूमत फंड्स जी दस्तियाबी बाबति सदर खे आगाही ॾेई छॾी। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे लाइ बि वधीक बजट रखण जो इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत हेठि बिजली विरिहाईंदड़ कंपनीअ जी रिचकारी बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जी बिजली विरिहाईंदड़ कंपनी जी रिचकारी वारो अमल तेज़ करण जी हिदायत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त पहिरें मरहले में इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। शहबाज शरीफ चयो त खसारे मिलंदड़ रियासती इदारे जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। लबनानी फ़ौज जे सरबराह जनरल रोडलिफ हेकल जी GHQ आमिर फील्ड मार्शल सदास मुनीर सां मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फ़ौजी लाॻापनि खे वधीक खती ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लबनानी फ़ौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक खती ॾियण वारे आज़म जो वर्चाउ। लबनानी फ़ौज जे सरबराह पारां पाक फ़ौज जी पेशेवरानी सलाहियतुनि जी साराह। खिते में अमुन ऐं इस्तक़ाम बंद कोशिशुनि ते भेटा पेश कई। ISPR मूजिब GHQ पहुचण ते लबनानी कमांड इन चीफ खे पाकिस्तानी फ़ौज दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप ईरान सां ॾींहं ॿिनि में सुठो मुआदो थियण लाइ पुरउमीद। वाशिंगटन में साफ़िन सां ॻाल्हाईंदे सदर डोनल्ड ट्रंप चयो त विच ओभर में अमन मुआदे वारियूं कोशिशूं आख़िरी मरहले में आहिनि। ॿिनि कंट्रीनि ॾींहनि में सुठो मुआदो थी सघे थो। ईरान जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। तेहरान तेल वेकिरो नथो करे सघे। ॻाल्हियूं जंग जो हिसो आहिनि। अमरीकी सदर जे ॻाल्हियुनि में संजीदगी नज़र आई त ॻाल्हियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त ॻाल्हियुनि में मज़ामती महाज़ ऐं लबनान अतबार जो कोन आहे। लबनान ते अकबराई थी त ॻाल्हियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो त अमरीका सां मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जो आहे पर कोशिशूं जारी आहिनि। आमने हुरमज भेजो अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह। ॿई पायलट महफ़ूज़ रहिया। सदर ट्रंप अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थियण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त हादसे सबबि कंहिं बि शख़्स खे को नुक़सान नाहे पहुतो। हेलीकॉप्टर ईरानी फ़ौज जी फायरिंग सबबि तबाह थियो। या हादसे जो शिकार जांच जारी। खारजी फितने भारत आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी मंडल इलेक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद खारजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारजी शहज़ाद जूं पाबंदी मंडल तंज़ीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारजी शहज़ाद पारां भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी मंडल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिबि खारजी जो ॾुखंदड़ आवाज़ करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे। सिंध हुकूमत पारां कराची जे न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स लाइ सहूलत डेस्क क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शरदीलीना मेमून सदारत हेठि ट्रांसपोर्ट खाते जो इजलास। ट्रांसपोर्टर्स लाइ वन विंडो सहूलत क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। शरजील इना मेमून चयो त क़दम जो

0: 36 जून 2026 ताईं कमर्शियल गाॾियुनि खे डिजिटल ऐं ऑटोमेशन निज़ाम में शामिल करणु आहे। सिंध हुकूमत अवामी ख़िदमत ऐं ट्रांसपोर्ट शोबे में मुकमल डिजिटाइज़ेशन जे नज़रिए ते कम करे रही आहे।
1: आज मेहमान आने हैं घर पे। सुबह सुबह इस ख्याल ने उठा दिया है कि दावत के मेन्यू में क्या क्या होगा।
2: कोरमा बनाती हूँ।
3: भाभी के हाथ का कोरमा तो मस्त है,
2: बल्कि बिरयानी भी बना लेती हूँ।
4: आज बिरयानी हो जाए तो मजा आ जाए।
2: अचार गोश्त तो लाजमी बनेगा। अम्मी को तिक्का बोटी भी पसंद है, नेहारी बनाई तो हलीम का क्या फायदा। पर हलीम ना बना तो मजा नहीं आएगा।
5: ऑफर ही ऐसी है कि सब कुछ बनाने का दिल चाहेगा, क्योंकि नेशनल रेसिपी मिक्सर्स ने दे दिया है अपनी मखसूस रेंज पर खास डिस्काउंट, ताकि आप सब कुछ बनाएं बिना घबराए।
2: दावतों में कोई कमी ना रह जाए। तो फिर इस ऑफर के बारे में क्या ख्याल है?
0: अबदार हम लोग हो सिंध हाई कोर्ट सांगर जे अॻूणे SSP आबिद अली बलोच जी हिफ़ाज़ती ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। अदालत जो SSP आबिद बलोच खे 10,000 जा ज़मानती मचलका जमा कराइण जो हुकम। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिब SSP आबिद बलोच ख़िलाफ़ FIA मनचात केस जी जांच करे रही आहे।
6: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
8: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली
7: आवाज की डोर से बंधा हुआ
9: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
10: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
11: This program is brought to you by
12: Al Habib Current Plus Account, Bharosa Bhi, Raftar Bhi, Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
13: Chhawa penje karobar ji tarakki lai soche raha aayo.
14: The Poe GAFM 90.4 Matli Badin ek edo FM radio aaye
13: jeko hale tho bina break ae musalsal.
14: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
13: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
13: 0331252576।
14: जी हा, 2315525786
13: GAFM रेडियो नेटवर्क,
14: सिंध जो आवाज़।

एक शख्स ने अपने बेटे से वसीयत करते हुए कहा, बेटा मेरे मरने के बाद मेरे पैरों में ये फटे पुराने मोजे पहना देना, मेरी ख्वाहिश है मुझे कब्र में इसी तरह उतारा जाए। बाप का मरना था, गुस्लो कफन की तैयारी होने लगी, चुनाचा हस्बे वादा बेटे ने आलिम दीन से वसीयत का इजहार किया, मगर आलिम दीन इजाजत ना देते हुए फरमाया, हमारे दीन में मैयत को सिर्फ कफन पहनाने की इजाजत है। लड़के ने काफी इसरार किया, जिसकी बिना पर उलमा एक शहर जमा हो गए ताकि कोई नतीजा निकल सके, मगर होना क्या था, लफ्जी तकरार बढ़ती गई। इसी असना में एक शख्स वारिद मस्जिद हुआ और बेटे को बाप का खत थमा दिया, जिसमें बाप की वसीयत यूं तहरीर थी, मेरे प्यारे बेटे देख रहे हो, कसीर मालो दौलत जाहो चश्म बागात गाड़ी कारखाना तमाम इम्कानात होने के बावजूद इस बात की इजाजत नहीं है एक बौसीदा मोजे को भी अपने साथ ले जा सकूं, एक रोज तुम्हें भी मौत आएगी, आगा हो जाओ, तुम्हें भी एक कफन ही लेके जाना पड़ेगा, कोशिश करना जो माल और दौलत मैंने विरसे में छोड़ी इससे इस्तफादा करना, नेक राह में खर्च करना, बेसहारों को सहारा बनना, क्योंकि जो वाहिद चीज कब्र में तुम्हारे साथ जाएगी वो तुम्हारे अमाल होंगे। यही तलकीन है आप सबसे भी, तैयारी वहां की रखनी है जहां लॉन्ग स्टे होना है। वक्ती स्टे के लिए हम कभी कहीं सफर पे जा रहे होते हैं, रस्ते में रुककर गाड़ी से उतरकर चाय पानी करते हैं, खाना पीना करते हैं, फिर दोबारा से गाड़ी में सवार होकर अपनी मंजिल की जानिब चलते हैं। तो यही और आपकी मेरी जिंदगी की असल हकीन वेलकम कहेंगे। और रिक्वेस्ट है लाड़काना वालों से, प्लीज टाइमली प्रोग्राम कनेक्ट किया करें, आपके स्टेशन पे कभी भी टाइमली प्रोग्राम कनेक्ट नहीं होता। अपने तमाम सामने को बताते चलें, जी मीरपुर खास FM 88 के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ऑन एयर है सब दोस्त हमारे, और लाइव कॉल नंबर आप नोट कर लें 03136615688 03136615688 लाइव कॉल नंबर है, उसके साथ ही साथ

0: ने तो उसपे पूरे एविल उतरा करें, फिर जो है प्रोग्राम में आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जबरदस्त रहती है, बहुत यादगार रहती है, और प्रोग्राम में आप लोगों का हमारा साथ ऐसा ही होता है जैसे चाय में शक्कर, सालन में नमक का। तो जनाब आपने हमें बताना है खवातीन अपनी उम्र और मर्द हजरात अपनी सैलरी क्यों छुपाते हैं, इसकी क्या वजह है, ये बताने के लिए आपने हमें जो है कॉल के थ्रू प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए डायल करना है 03133616588 और SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। खवातीन अपनी उम्र और मर्द हजरात अपनी तनख्वाह, अपनी पगार, अपनी सैलरी क्यों छुपाते हैं, इसकी क्या वजह है, ठीक है। अब आप अकाल पे आके ये मत कहिएगा हाँ छुपाते हैं, इसकी वजूहत बतानी है, ठीक है। और मैं आपकी कॉल से हमले प्रोग्राम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुनते हो?
0: मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है?
1: आपको आपने कहा था लास्ट का नाम है, प्रोग्राम सही करेक्ट नहीं हुआ आपका प्रोग्राम।
0: जी हाँ,
1: मैं आपका सुन रहा हूँ भाई।
0: चले अच्छी बात है, ये जो प्रोग्राम कनेक्ट हुआ है ये नात जब चली है जब से कनेक्ट हुआ है, आप टॉपिक पे बात करेंगे या आपने सिर्फ यही बताना था?
1: मैं टॉपिक नहीं सुना, आपका प्रोग्राम हिलमल चल रहा है।
0: चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने बताया, आप नहीं बताते तो मुझे पता ही नहीं चलना था, मैं तो बेखबर रह जाती, मामा खा जरा सी बात पे मैं बीमार पड़ जाती। थैंक यू आपने बताया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अदा वेलकम कहेंगे आपको, खवातीन अपनी उम्र मर्द हजरात अपनी तनख्वाह क्यों छुपाते हैं, इसकी वजह क्या है?
1: अभी खवातीन पंहिंजी उमिरि घटि हिन जे करे ॿुधाइनि थियूं त चवनि थियूं त माना आऊं जवान सदाई माना सदायां तोरी त माना हिकिड़ो जो माण्हू पुछे घणी तुंहिंजी जमार आहे त उहो सिलाणी जी चवंदी मुंहिंजी
0: चले। और मर्द हजरात अपनी तनख्वाह क्यों छुपाते हैं, इसकी क्या वजह है?
1: मर्द हजरात पंहिंजो पघार घटि करे ॿुधाईंदा आहिनि त को माण्हू असांखे सवाल न करे या घुरे उधारा न घुरे, हिन जे करे चवंदा आहिनि यार हिन यार मूंखे घटि मिलियो, मूंखे जेको थो फिलाणे फिलाणे माण्हू जी उधर लाहिणी आहे एतिरा मूंखे गुजार सचे को थो।
0: आपने भाभी को अपनी तनख़्वाह बताई हुई है? चले अच्छी बात है, आपकी बेगम तो नहीं कहती है लिखाओ सारे के सारे पैसे इधर रखो मेरी हथेली पे वरना खाना नहीं देने वाली मैं आपको। चले चले अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया था, आप शाम ले प्रोग्राम हुए। थैंक यू
1: सलाम गुलाब थोड़ो टेम शुरू वाले प्रोग्राम जो कॉलर के घट तो मिले थोड़ो इो मेरी टेम जो अंदाजो रखनी सजो।
0: चले कोशिश करूंगी, कॉलर्स ने आके दोस्तों को सलाम देने होते हैं, उन बिचारों को मेरे टॉपिक्स कहाँ नजर आते हैं, बिचारों को मैं क्या कॉल्स पे लूं लिसनर्स को, उन्होंने आके अपने दोस्तों ने नाला 5-10 दोस्तों के नाम ही लेने हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। भली कर अदा तमा के भी क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
1: अभी टॉपिक के बारे में मर्द हज़रात माना इन करे पघार जी सभी को कंदो आ तो के वक्त सरकम अचे ए खवातीन जेको है वो चवे हां जदी पुरानी उम्र बुदा तो कोई न चवे तो 40 साल की है को 30 साल की घट उम्र बुदाई है।
0: अच्छा वो सबसे कम उम्र दिखने के लिए ये उम्र बताती है कि हम थोड़ी कम उम्र इसके
1: नौजवान
0: चले ठीक हो गया। दोस्तों के नाम लेंगे आप भी? ठीक है बहुत शुक्रिया, जितनी देर में 5-7 नाम होते हैं इतनी देर में और काले भी आ जाती हैं। नेक्स्ट ये ब्रेक पे जाने वाले हैं, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 Network. GFM.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर.
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक.
0: भागो
2: अहमद, हटो वहां से.
3: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें. सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं. इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं. करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें. महकमा सेहत, हुकूमत सिंध.
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट. कारोबार चलाने के लिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम अलीमुल कुरान रोजानो सुबह
0: सत्य नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

क़ौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वगे तलब, सेनेट इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वगे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जे एडवाइस ते इजलास तलब कया। पार्लियामेंटी मामलनि वारे वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चवा त नए माली साल जी बजट 12 जून ते पेश करण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जे बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में पेश थींदी।

லப்னானி போஜிசர் பிரா ஜன்னல் தொடல் பெஹக்கல் ஜி ஜி எஸ் கியூ அஹமத் ஃபீல்ட் மார்ஷல் சிராசம் முனீரசா முலாக்காத் गडियल दिलचस्पी वन मामल खिते की तब्दील सूरतहाल दिफाई सहकार ए फौजी लागापन के खती डेण से गाल बोल फील्ड मार्शल पारा लबनानी फौज से दिफाई सहकार के खती डेण बारे अजम जो वर्छाव लबनानी फौज सरबराह पारा पाक फौज के पेशेवर सलाहतन की सराह खिते में अमुन ए इस्तकामबर कोशिश से भेटा पेश आईएसपीआर मूजिब जी एच क्यू पहुंचने लबनानी कमांडर इन चीफ के पाकिस्तानी फौज दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान से डी बिन में सुठो मुआदो थे पुर उम्मीद। वॉशिंगटन में सहाफिन से गलंदे सदर डोनाल्ड ट्रम्प विच ओवर में अमन मुआदे वाली कोशिशों आखिरी मरहले में आन बिन का टिन डी में सुठो मुआदो थी सके तो। ईरान की नाकाबंदी बरकरार है, तेहरान तेल विक्रो नो कर सके। गालियों जंग जो हिस्सो आन अमरीकी सतर के गाल में सजीदगी नजर आई तो गालियन से को भी एतराज न हों। ईरान के कौमी सलामती बाबत सलाहकार इब्राहिम अजीजी है तो गाल में मजामती महाज ए लबनान वे मामले तोते न हटन। अमरीका एतबार जोगो ना है, लबनान से अकबराई थी तो गाल अगते वही सन थी। गडियल कौमन में ईरानी सफीर अमीर सईद ईरानवी अमरीका से मुआदे के हतमी शक्ल देने लाय अमरीका से पाकिस्तान दर्जे गाल जारी आन। जंगबंदी के मसूदे में लबनान समेत सभी इलाका शामिल किया वा अजा तक को भी मुआदो न थो है पर कोशिशों जारी आन। अबनाह हुरमज वेझो अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर किरी तबाह, पय पायलट महफूज रहा। सदर ट्रम्प अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर किरी तबाह थे तस्दीक कन्दे हादसे सबब कें भी शख्स के को नुकसान ना पौतो। हेलीकॉप्टर ईरानी फौज के फायरिंग सबब तबाह थो या हादसे का शिकार जांच जारी है। खारजी फितने भारत ए आजाद कश्मीर की पाबंदी मंडल एक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी ए भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारजी शहजाद जू पाबंदी मंडल तंजीम के हिदायतू दियण वाली आडियो सामू अची वही। खारजी शहजाद भारत पारा लिखल बयान पढ़ी पाबंदी मंडल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के हिदायतू दई रो है। माहिरन मूजिब खारजी जो डकंदड़ आवाज वाजे कर रो है तो खेस हिदायतू भारत दई रो है। सिंध हुकूमत पारा कराची के न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स लाय सहूलत डेस्क कायम करण जो फैसलो। न्यू सीनियर वजीर शर्दिल इनाम मेमन सदरत हेठ ट्रांसपोर्ट खाते इजलास। ट्रांसपोर्टर्स लाय वन विंडो सहूलत कायम करण जो फैसलो। शर्दिल इनाम मेमन तो कदम जो मकसद 30 जून 2026 तक कमर्शियल गाड़ियों के डिजिटल ए ऑटोमेशन निजाम में शामिल करण है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत ए ट्रांसपोर्ट शोबे में मुकम्मल डिजिटाइजेशन के नजरिए से कम कर रही है। सिंध हाईकोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी नतीजन खिलाफ दाखिल दरखास्तन के बुधड़ी दरखास्त गुजार तरफा तरमीमी दरखास्त दाखिल कामयाब करार दिनल उम्मीदवार के धुर बनाए पो। अदालत कमीशन का लिखत ए जुबानी इम्तिहान जो मुकम्मल तरकीकार तलब कर वरतो। समूरा तफसील तरकीकार इंदड़ बुधड़ी से पेश करण जो हुक्म।

सिंध में गर्मी की लहर बरकरार, मुख़्तलिफ़ शहरनि में पारो 50 सेंटीग्रेड ताईं पहुची वियो। हैदराबाद में हीट स्ट्रोक सबबि हिकु ॼणो फौत, हिकु बेहोश थी वियो। कराची जो गर्मी पद 40 सेंटीग्रेड पार करे पियो। लाड़काणो, सखर, शेजगंजराबाद, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीज़न में बि कहर जी गर्मी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में पारो 50 सेंटीग्रेड ताईं पहुतो। हैदराबाद जे कोइनूर चौक ते गर्मी जी सट न सां पीरसन फौत थी पियो। नदरत कॉलेज वटि हिकु ॼणो गर्मी सबबि बेहोश, इस्पताल मुंतकिल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: आई। हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हाँ, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाणक डंडन जी बीमारी में मुब्तला मरीज बिल्कुल परेशान न थियन। मीरपुर खास शहर में डॉक्टर दोहा राजड़ एस्थेटिक एंड डेंटल क्लिनिक ते लेडी डॉक्टर डॉक्टर दोहा राजड़ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन BDS लम्स जाम शोरू RDS MSC डिप इन

0: एलोवेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अच्छा एक से कहती है माशाल्लाह बहुत खूब गुल, मुझे एक बात आपकी आज भी याद है, आपने कहा था 8 साल पहले। इतनी पुरानी बात है अक्सा, आपकी याददाश्त में मैं सदके जाऊं, आपकी याददाश्त कमाल की है। अब मुझे 8 दिन पहले की बातें भी भूल जाती हैं। अच्छा क्या कहा था मैंने, मैं बहुत कुछ कहती रही हूँ अक्सा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे करना वो, चले आई विल ट्राई, पोइट्री सुनाते हैं हम आपको। कौन आपके बारे में क्या कहता है, किसने आपका गलत इमेज लोगों को दिखाया, किसने आप पर तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया, किसने आपके जज्बात की कदर की, किसने इनका मजाक उड़ाया, किसने आपको हंसाया, किसने आपको रुलाया, कब कब आप जाए नमाज पे सजदा रेज होते हुए टूट कर बिखरे, कब कब आपने अल्लाह की रजा के लिए अपनी दुआओं को कुर्बान किया, कब कब आप तन्हाई में अल्लाह ताला को याद करके जारो कतार रोए, कब कब आपने झोली फैलाकर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की, कब कब आपने दिल में सरगोशियां की जब जबान से कुछ ना कह सके, कब कब आपने अल्लाह ताला से गुफ्तगू के लिए कुरान पाक खोला, और कब कब खौफ और तकलीफ से लड़कर आपने अपने रब को पुकारा। तो ये जितना भी पीरियड आपकी लाइफ में गुजरा है ना, ये सब अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह हमसे लाइन कैसे हो सकता है, अल्लाह जानता है उसने कब और कैसे आपकी मदद करनी, अल्लाह ताला जानता है जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं उस तकलीफ से राहत का वसीला कैसे बनाना है, और अल्लाह ताला जानता है आपको कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी, अल्लाह जानता है आपको कब और क्या देना, अल्लाह सब जानता है, उसे सारी खबर है। वो जो रब है वो सब है, तो सब कुछ उस पे छोड़ दिया करें। इतने लंबे अरसे से जब आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इतने सालों से आप मुझे याद करवा रहे हैं गुजरी हुई बातें, आपको मेरी बहुत सी बातें याद हैं, तो मैं आपसे जस्ट ये कहूंगी कि इतना लंबा पीरियड जो मेरी जिंदगी में गुजरा है उसके बाद मेरी जात में एक मजबूत चेंज आया। मैं यही चेंज आप लोगों में देखना चाहती हूं कि कोई भी मामला हो किसी भी किस्म का, आप उस मामले को रब पर छोड़ के कह दें, या अल्लाह ये मामला मुझसे जोर है, मैंने ये अपना मामला तेरे हवाले किया, मेरे साथ मामला रहमी फरमा। यकीन जानिए अल्लाह ताला इतना बेहतरीन फैसला करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि फिर आपकी जिंदगी में सुकून की आमद होती है। वो इसलिए होती है कि रब आपका जो अंधा इतवाद होता है ना, उसे कभी भी नहीं तोड़ता है। तो रब्बे कायनात जो है वो बहुत बेहतर समझते हैं अपने बंदे के मामलात को, ठीक है। अल्फाज के झूठे बंधन में, आगाज के गहरे पर्दों में, अल्फाज के झूठे बंधन में, आगाज के गहरे पर्दों में हर शख्स मोहब्बत करता है, हालांकि असली रूप छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ लफ्जों के तीर चलाते हैं, एक बार नजर में आके वो फिर सारी उम्र रुलाते हैं, खुलूस और मोहब्बत मेहर वफा सब रस्मी रस्मी बातें हैं, हर शख्स खुदी की मस्ती में, हर शख्स खुदी की मस्ती में बस अपनी खातिर जीता है, बस अपनी खातिर जीता है। अगर आप समझ गए ये बात, तो आई नो वेरी वेल आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन बाकी नहीं रहेगा जिससे आपके होंठों पे आंसुओं और आपके होंठों पे मुस्कुराहट और आपकी आंखों में आंसुओं का सबब बने। किसी को भी इतना इख्तियार आपने अपनी लाइफ में हरगिज नहीं देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यही था हमारा आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम में आखिर में जाते जाते यही कहूंगी कि कोशिश कीजिएगा अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें दूसरों की जिंदगी में आपका वजूद खुशी मुस्कुराहट और सुकून का बायस हो, किसी की आंखों में आंसुओं की वजह आपकी जात ना हो। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए यानी शब 8 बजे तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।

0: आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
1: चालीह साल जे तरक्याती बजट बाबत सदाशिव अली सरदार के आगाही डेई छी वफाक एसेट मां फंड्स जी फरामी बाबत हतमी फैसलो आसिफ अली सरदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदर आसिफ अली सरदारी सां मामले ते अॼु मुलाक़ात थियण जो इम्कान। ज़रियन मूजिब इसहाक़ डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रूपियनि जी वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां फाक़ खे 620 अरब रूपिया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, केपी मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजट में NFC तहत सूबनि खे 8746 अरब रूपिया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा। क़ौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वॻे तलब। सेनेट इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वॻे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते इजलास तलब कया। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते पेश करण जो इम्कान आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठि बिजली विरिहाईंदड़ कंपनीज जी निजकारी बाबति इजलास। वज़ीर आज़म जी बिजली विरिहाईंदड़ कंपनीज जी निजकारी वारो अमल तेज़ करण जी हिदायत। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पहिरें मरहले में इस्लामाबाद, गुजरांवाला ऐं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। शहबाज शरीफ चयो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदार लबनानी फौज जे सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल जी GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाकात। गडि॒यल दिलचस्पी वारनि मामलनि, ख़िते जे तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फौजी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लबनानी फौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक हथी ॾियण वारे अज़म जो वर्ज़ाव। लबनानी फौज जे सरबराह पारां पाक फौज जी पेशावरणी सलाहियतनि जी सारा खिते में अमन ऐं इस्तेहकाम वारनि कोशिशनि ते भेटा पेश। ISPR मूजिब GHQ पहुचण ते लेबनानी कमांडर इन चीफ खे पाकिस्तानी फौज जे दस्ते गार्ड ऑफ ऑनर पेश कयो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान सां ॾींहं ॿिन में सुठो मुआदो थियण लाइ पुरउमेद। वॉशिंगटन में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त विचोभर में अमन मुआदे वारियूं कोशिशूं आख़िरी मरहले में आहिनि। ॿिन खां टिन ॾींहनि में सुठो मुआदो थी सघे थो। ईरान जी नाकाबंदी बरक़रार आहे। तेहरान तेल विकिरो नथो करे सघे।

गालियूं जंग जो हिस्सो आहिनि। अमरीकी सदर जी गालियुनि में संजीदगी नज़र आई त गालियुनि ते को बि एतराज़ न हूंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती बाबति सलाहकार इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त गालियुनि में मज़ामती महाज़ ऐं लबनान वारे मामले तां पोइते न हटंदो। अमरीका एतबार जोगो नाहे, लबनान ते अगर भराई थी त गालियूं अॻिते वधी सघनि थियूं। गरियल क़ौमन में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी चयो आहे त अमरीका सां मुआदे खे हतमी शकल ॾियण लाइ अमरीका सां पाकिस्तान ज़रिए ॻाल्हियूं जारी आहिनि। जंगबंदी जे मसवदे में लबनान समेत सभई इलाइक़ा शामिल कया वेंदा। अञा ताईं को बि मुआदो न थियो आहे, पर कोशिशूं जारी आहिनि।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

नए माली साल जे तरक़ियाती बजेट लाइ सूबनि खां 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ा खे तरक़ियाती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबाई वसीलनि बाबति सदर ज़रदारी खे आगाही ॾेई छॾी। वफ़ाक खे सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर आसिफ ज़रदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जी सदर आसिफ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाकात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिब इसहाक डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रुपियनि जी वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक खे 620 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़ शामिल। बजेट में NFC तहत सूबनि खे 8746 अरब रुपया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा।

0: आपके बच्चों का हेल्थी फ्यूचर जुड़ा है हेल्थी हाइड्रेशन से, लेकिन जब दोनों ग्लास दिखने में एक जैसे हों तो आप इनमें से कौन सा चूज करेंगे? कंफ्यूज्ड? चूज करें नेस्ले प्योर लाइफ, जो स्विस हेरिटेज को बरकरार रखते हुए पिछले 25 साल से ज्यादा अरसे से आप और आपकी फैमिली को हाई क्वालिटी हेल्दी हाइड्रेशन फराहम कर रहा है। हमारी आज की चॉइसेस से ही बनता है इनका हेल्दी फ्यूचर, और हेल्दी फ्यूचर से कीमती।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश

0: लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां राब्तो कंदा।
0: 0331252578 6।
1: जी हाँ, 2315525786।
0: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din har pehar, zindagi ki lehar, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
4: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
3: सुनते रहो GFM 90.4.

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

क़ौमी असेंबली जो बजट इजलास सुभाणे शाम 5 वॻे तलब, सेनेट इजलास बि सुभाणे शाम जो 4 वॻे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते इजलास तलब कया। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते बजट पेश करण जो इम्कान आहे। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिससे मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 0331252

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: अपना शहर, अपना घर और मातले की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है

0: और SMS alerts facility, ATMs and cash deposit machines की easy accessibility, मुल्क भर में फैला हुआ branches का वसी network, Alhabib current plus account, भरोसा भी रफ्तार भी, Bank Alhabib, रिश्ता भरोसे का।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

शाम 5 वगे तलब सेनेट जो इजलास भी सुभाणे शाम जो 4 वगे थींदो। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते इजलास तलब कया विया। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक़ फ़ज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते पेश करण जो इम्कान आहे। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी।

नए माली साल जे तरक्याती बजट लाइ सूबनि खां 1200 अरब रुपया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ाक़ी तरक्याती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबाई वसीलनि बाबति सदर आसिफ अली ज़रदारी खे आगाही ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर आसिफ अली ज़रदारी कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी आसिफ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाक़ात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मौजे पिरल कमेटी 1200 अरब रुपियनि जे वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक़ी 620 अरब रुपया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब, केपी मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण। एनएफसी तहत सूबनि खे 8746 अरब रुपया मिलण जो इम्कान हो। नए वारे साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा। खारजी फितने भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी बणियल इलेक्शन कमेटी जो गठजोड़ पिए नकाब। अफ़गानिस्तान में मौजूद खारिजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राज सरगर्म खारिजी शहज़ाद जूं पाबंदी बणियल तंज़ीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारिजी शहज़ाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी बणियल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। माहिरनि मूजिबि खारिजी जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़े करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे। रावला कोट समेत समूरी आज़ाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठि आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। मुमलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी बणियल तंज़ीमूं वाइकियूं थी रहियूं आहिनि। हिकु आडियो बि साम्हूं आई आहे। कश्मीरियुनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि। छा ही कश्मीरियुनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियण चाहिनि था? वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फोतगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज़ जारी कई वेंदी। पीपल्स पार्टी जो गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी हुकूमत ठाहिण ते ग़ौर। पीपी अॻवान अदीब अफ़ज़ल चंद चयो आहे त पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदी। बिलावल भुट्टो जी बि कुझु ॾींहनि में गिलगित वञण जा इम्कान। गिलगित जी चूंडनि में पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद 7, नून लीग 6 ऐं 1 सीट ते MWM कामयाबी माणी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिबि 5 टकनि जे कुझु पोलिंग स्टेशन ते 15 जून ते बीहर पोलिंग कराई वेंदी।

0: बर्तानिया पढ़ लाइ वींदड़ 10,000 पाकिस्तानी उत्ते पनाह वठी छी। घरू मामलन बाबत कौमी असेंबली जी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में इंकशाफ। DGFIA उस्मान अनवर कमेटी के ब्रीफिंग डींदे बुधायो तो गैर कानूनी तौर पढ़े वींदड़ पाकिस्तानी मुल्क की बदनामी जो सबब बणजी रहा है। यूरोपीय यूनियन बेन मुल्क यो मामलो उथारो है। बर्तानिया में स्टूडेंट वीजा से वींदड़ 10,000 का वधिक पाकिस्तानियन भी वीजा जो गलत इस्तेमाल करे उते पनाह वठी छड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से ज़री शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफद की मुलाकात। वफद में हारी तंजीमन जा अगवान डेरी तोड़ी लाइव स्टॉक बिज ठाण वाली कंपनीज कौमी ए मल्टीनेशनल कंपनीज जहा नुमाइंदा भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान की मईशत बहाल करण में ज़री शोबो इनकलाबी तब्दीली आण में भरपूर सलाहियत रखे तो। वज़ीर आज़म डेरी ए लाइव स्टॉक के हथी डेण लाइ पेश कयल तजवीजन की आजियां कई। वज़ीर आज़म की सदारत हेठ बिजली विराईंदड़ कंपनीज की निजकारी बाबत भी इजलास थियो। इजलास के ब्रीफिंग डींदे बुधायो वियो त पहिरें मरहले में इस्लामाबाद गुजरावाला ए फैसलाबाद इलेक्ट्रिक की निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी की मंजूरी भी ॾेई चुकी आहे। शहबाज शरीफ चयो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदारनि जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर

0: मस्ती की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331252576।
2: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना माटली और माटली की आवाज GFM 90.4
2: जियो सिंधी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
1: yeah!

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी पारां गिलगित बल्तिस्तान में नवाज लीग बदरां आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी हुकूमत ठाहिण जी तयारी। पीपल्स पार्टी अॻवान नदीम अफ़ज़ल चंद चयो आहे त आज़ाद उम्मीदवारनि सां गॾिजी गिलगित में हुकूमत ठाहिण जी कोशिश कंदासीं। बिलावल भुट्टो जी बि कुझु ॾींहनि में गिलगित वञण जा इम्कान आहिनि। गिलगित जे चूंडुनि में पीपल्स पार्टी 10, आज़ाद 7, नून लीग 6 ऐं 1 सीट ते MWM कामयाबी माणी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मूजिबि 5 तकनि जे कुझु पोलिंग स्टेशन ते 15 जून ते ॿीहर पोलिंग कराई वेंदी।

0: क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जा इजलास सुभाणे तलब। बजट 12 जून ते पेश थियण जो इम्कान। सदर वज़ीर आज़म जी एडवाइस ते क़ौमी असेंबली जो इजलास सुभाणे 5 वॻे ऐं सेनेट इजलास मंझंदि 4 वॻे तलब करे वरिता। वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी चयो आहे त नए माली साल जी बजट 12 जून ते बजट पेश करण जो इम्कान आहे। नाणे वारो वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 जी बजट पेश कंदो। साॻे ॾींहं ते बजट सेनेट में बि पेश थींदी।
1: नए माली साल जी तरक़ियाती बजट लाइ सूबनि खां 1200 अरब रूपिया वठण जी तजवीज़। पंजाब वफ़ाक़ी तरक़ियाती फंड्स लाइ पैसा ॾियण जी ख़ातिरी कराए छॾी। सिंध हुकूमत बि सूबई वसीलनि बाबति सदर आसिफ ज़रदारी खे आगाही ॾिनी। वफ़ाक़ खे सिंध मां फंड्स जी फरहमी बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर कंदो। वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदर आसिफ ज़रदारी सां मामले ते अॼु मुलाकात थियण जो इम्कान। ज़रियनि मूजिब इसहाक़ डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी 1200 अरब रूपियनि जी वाधू फंड्स लाइ कोशिशूं करे रही आहे। पंजाब मां वफ़ाक़ खे 620 अरब रूपिया ॾियण जी तजवीज़ आहे। सिंध मां 310 अरब रूपिया, खैबर पख़्तूनख़्वा मां 180 अरब ऐं बलोचिस्तान मां 85 अरब मर्कज़ खे ॾियण जी तजवीज़। बजट में एनएफसी तहत सूबनि खे 8746 अरब रूपिया मिलण जो इम्कान हो। नए माली साल में सूबनि खे 7581 अरब मिलंदा।
0: खारजी फिते भारत ऐं आज़ाद कश्मीर जी पाबंदी बढ़ियल एक्शन कमेटी जो गठजोड़ बेनकाब। अफ़गानिस्तान में मौजूद खारजी ऐं भारतीय गुझे इदारे राह जे सरगरम खारजी जी शहज़ाद जूं पाबंदी बढ़ियल तंज़ीम खे हिदायतूं ॾियण वारी आडियो साम्हूं अची वई। खारजी शहज़ाद भारत पारां लिखियल बयान पढ़ी पाबंदी बढ़ियल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खे हिदायतूं ॾेई रहियो आहे। ॿाहिरनि मूजिब खारजी जो ॾकंदड़ आवाज़ वाज़े करे रहियो आहे त खेसि हिदायतूं भारत ॾेई रहियो आहे।
1: रावला कोट समेत समूरी आज़ाद कश्मीर में हालतूं कंट्रोल हेठि आहिनि। माण्हुनि जी जान ऐं माल जी हिफ़ाज़त कई पई वञे। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी बणियल तंज़ीमूं वाइखू थी रहियूं आहिनि। हिकु आडियो बि साम्हूं आई आहे। कश्मीरियुनि जो हक़ आहे त उहे कानून साज़ी कनि। छा ही कश्मीरियुनि जो हक़ कंहिं ॿिए खे ॾियण चाहिनि था? वफ़ाक़ी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे मामले ते का कसर नाहे छॾी। आज़ाद कश्मीर में फौदगियुनि बाबति तफ़सीली प्रेस रिलीज़ जारी कई वेंदी।
0: बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन। फितनत हिंदुस्तान जा 14 दहशतगर्द मारजी विया। ISPR मूजिब बेसी मियां वारे इलाइक़े में ऑपरेशन दौरान फितनत हिंदुस्तान जे 14 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। केतिरा दहशतगर्द ज़ख़्मी बि थिया। ऑपरेशन दौरान दहशतगर्दनि जूं 4 गाॾियूं बारूदी मवाद ऐं हथियार तबाह कया विया।
1: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां ज़रई शोबे जे स्टेक होल्डर्स जे वफ़द जी मुलाक़ात। वफ़द में हारी तंज़ीमनि जा अॻवान, डेरी तोड़े लाइव स्टॉक, ॿिज ठाहिण वारियूं कंपनियूं, क़ौमी ऐं मल्टी नेशनल कंपनियुनि जा नुमाइंदा बि शामिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण हो त पाकिस्तान जी मैशत बहाल करण में ज़रई शोबो इनकलाबी तब्दीली आणण में भरपूर सलाहियत रखे थो। वज़ीर आज़म डेरी ऐं लाइव स्टॉक खे हथी ॾियण लाइ पेश कयल तजवीज़ुनि जी आजियां कई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि बिजली विरिहाईंदड़ कंपनीज जी निजकारी बाबति बि इजलास थियो। इजलास खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो वियो त पहिरीं मरहले में इस्लामाबाद, गुजरांवाला ऐं फैसलाबाद इलेक्ट्रिक जी निजकारी कई वेंदी। काबीना कमेटी निजकारी जी मंज़ूरी बि ॾेई चुकी आहे। वज़ीर आज़म जो चवण हो त खसारे में हलंदड़ रियासती इदारनि जी निजकारी हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे।
0: लेबनानी फ़ौज जे सरबराह जनरल रोडोल्फ हेकल जी GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि, खिते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल, दिफ़ाई सहकार ऐं फ़ौजी लाॻापनि खे वधीक हथी ॾियण ते ॻाल्हि ॿोल। फील्ड मार्शल पारां लेबनानी फ़ौज सां दिफ़ाई सहकार खे वधीक हथी ॾियण वारे अज़म जो वर्जाउ। लेबनानी फ़ौज जे सरबराह पारां पाक फ़ौज जी पेशावरारियुनि सलाहियतनि जी साराह। खिते में अमन ऐं इस्तेकाम वारनि कोशिशनि ते
2: मेरी तो हर्ष।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4। FM 90.4।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।